0: कुछ उनकी सुने कुछ अपनी कहें आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना, आपके मेज़बान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। अरे वसीमा, कहाँ से आ रही हैं आप?
0: ज़रा मौसम का हाल देखने गई थी। बारिशों के मौसम में बारिश से मतलब आफात का इम्कान ज़्यादा होता है ना, इसलिए नज़र रखना ज़रूरी है।
1: वो मुझसे सुन ले, रोज़ाना खबरों में हम मौसम में यही जिक्र तो करते हैं।
2: जी, गुज़श्ता हफ्ते कई दिन बारिशें रही हैं। इंतहाई गैर मुस्तहकम मौसमी हालात के बायस बेशतर जापान शदीद बारिशों की ज़द में रहा।
1: बिल्कुल, गुज़श्ता हफ्ते से टोक्यो समेत कई इलाकों पर बारिश के बादलों का सिलसिला बनने से मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हुई।
2: जी, और बारिश की शिद्दत का इससे भी अंदाज़ा लगाएं कि कुछ इलाकों में इस महीने एक घंटे के दौरान इतनी बारिश हुई जो पूरे महीने की औसत के बराबर थी।
0: और खदीजा, 8 सितंबर को तो मौसमियाती एजेंसी ने आईची और गिफू प्रीफेक्चर के एक दरिया में सैलाब की सतह 5 का हंगामे इंतबाह भी जारी किया। ये एजेंसी के 1 से 5 तक के पैमाने पर इंतबाह की बुलंद तरीन सतह है।
2: काफी लोग परेशान रहे भाई, इतने इंतजाम के बावजूद फितरत के सामने तो इंसान वाकई मजबूर है।
1: इसके बावजूद चौकस रहने से बचाव मुमकिन है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मौसमियाती हुक्काम मौसमी सूरत हाल पर नजर रखने का कहते हैं, इसीलिए नजर डाल कर आई हूँ।
2: अच्छा अच्छा, यानी अब मौसम पर भी तुम्हारी नजर है वसीमा जी। अच्छा खलील साहब, याद आया, गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने कहा था कि 30 अगस्त से 5 सितंबर तक के बोसाई वीक यानी आफा से बचाव की तैयारी के हफ्ते की मुनासबत से कुछ देखने गए थे आप, और वादा किया था आपने कि आइंदा महफिल में इसकी तफसील बताएंगे हमें।
0: आज है आइंदा महफिल, और अब बताइए कहाँ गए थे।
1: जी, मैं होंजो लाइफ सेफ्टी लर्निंग सेंटर यानी बोसाई कान गया था।
2: अच्छा अच्छा, बोसाई कान गए थे। अच्छा, फिर इसकी कुछ तफसील भी तो बताइए ना।
1: ये एक ऐसी जगह है जहां आप न सिर्फ आफात से निमटने का तरीका सीख सकते हैं बल्कि उन्हें महसूस भी कर सकते हैं।
0: अरे वाह, इसका मतलब है आप तरबियत याफ्ता होकर आ गए। वैसे ये बताइए किस मरकज में गए थे।
1: मैं टोक्यो स्काई ट्री के पास जो है ना होंजो बोसाई कान, वहाँ गया था। बर्की मसनूआत और पॉप कल्चर के लिए मशहूर मरकज आकिहाबरा से ट्रेन लें तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे वहाँ।
2: अच्छा अच्छा, ये तो पास ही है। शॉपिंग के लिए आकिहाबरा आना जाना तो रहता ही है, तो वहाँ से भी इसका चक्कर लगा सकते हैं हम।
0: तो खलील साहब, फिर उस मरकज पर आपने क्या देखा, क्या महसूस किया उस बोसाई कान में?
1: सबसे पहले मैं एक ऐसे बेसमेंट में गया जहां मामूली सा पानी दाखिल हो चुका था, यानी गहराई सिर्फ 20 सेंटीमीटर थी, और मुझे दरवाजा खोलना था ताकि बाहर निकल सकूं। दोस्तों, इस वक्त हमें यह बताया जा रहा है कि अगर आप बेसमेंट में हो और सैलाबी पानी आ जाए तो उस वक्त दरवाजा खोलना कितना मुश्किल होता है। तो यहाँ मेरे सामने दरवाजा लगा हुआ है, यहाँ पे पानी 10 सेंटीमीटर 20 और 30 सेंटीमीटर का मुझे बताया जा रहा है। तो अब मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, और आप भी देखिएगा कि दरवाजा खोलना कितना मुश्किल होता है। तो ट्राई करते हैं, आप भी इंजॉय कीजिएगा।
0: है 1 फुट से भी कम गहरा पानी है, और इतना जोर खलील साहब।
1: यकीन माने, 1 फुट पानी हो तो मेरे लिए बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा।
2: वो कहते हैं ना, पानी पत्थर काट देता है।
1: मुझे अच्छी तरह पता चल गया कि पानी को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए, और अगर आप गाड़ी में हो और पानी आए तो क्या करना चाहिए, ये मुझे कितामुरा शिंजी साहब ने बताया, जो इस मरकज के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। सबसे अहम बात यह है कि गाड़ी से जितनी जल्दी मुमकिन हो बाहर निकल जाएं, गाड़ी को महफूज मकाम पर रोकें और फौरन बाहर निकलें। अगर आप गाड़ी के अंदर फंस जाएं तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। वक्त गुजरने के साथ इंजन बंद हो सकता है, एयर कंडीशनिंग काम करना छोड़ देगी, और सूरत हाल दम घुटने तक भी पहुँच सकती है। इसलिए लोगों को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि वो फौरी तौर पर गाड़ी से बाहर निकल जाएं। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि हालात खतरनाक होने से पहले लोग मौसम से मुतालिक मालूमात पर गहरी नजर रखें, اور بلا ضرورت باہر جانے سے گریز کریں.
0: بالکل بالکل بھائی, اسی لیے میں نظر رکھتی ہوں.
2: اچھا کرتی ہیں وسیم آپ.
1: اس مرکز میں گھر کے بیسمنٹ میں پانی آ جانے کی نقالی بھی کی گئی ہے. میں نے صرف 20 سینٹی میٹر پانی کی سطح پر دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور بمشکل کھول پایا. اس لیے اس سلسلے میں بچنے کے لیے یہ اہم ہے کہ
2: پانی کی سطح بلند ہونے کا انتظار کیے بغیر سب سے پہلے اپنی جان بچائیں.
1: اچھا جی, یعنی آپ نے بھی مجھ سے ٹریننگ حاصل کر لی.
2: بہت اچھے طریقے سے.
0: اچھا, جان بچا کر طوفانی بارش میں باہر نکلنا بھی تو جوئے شیر لانے کے مترادف ہے, بلکہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا.
1: جی, مجھے طوفانی بارش کے تجربے کا بھی موقع ملا تو میرے یہ تاثرات تھے. کافی تیز بارش تھی لیکن ہم چونکہ سہارے کے ساتھ کھڑے تھے تو کافی مشکل ہوگا میرے خیال میں چلنا ایسی صورتحال میں.
0: اسی لیے موسمی پیشگوئی پر نظر رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ شدید بارش میں باہر جانے سے ہم گریز کریں.
2: اچھا, بارش سے تو پیشگوئی کی مدد سے بچا جا سکتا ہے, لیکن زلزلے کی صورت میں کیا کیا جائے؟
1: اس مرکز پر میں نے جاپانی زلزلہ پیما پر شدید ترین یعنی درجہ 7 کے زلزلے کا بھی تجربہ کیا. آپ دیکھتے ہیں تو اب میں ٹریننگ پر عمل کرتے ہوئے دیکھیے گا, ابھی زلزلہ جب آئے تو یوں یہ ایکسپیرینس کرنا بہت مشکل ہے.
0: ارے ارے, تربیت میں ہی آپ کے طوطے اڑ گئے. اصل زلزلے سے واسطہ کہیں پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ توبہ بھی, توبہ توبہ.
1: نہیں نہیں, یہی تو فائدہ ہے عملی تربیت کا کہ انسان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. کافی خطرناک ایکسپیرینس تھا. جب بھی موبائل پہ الارم بچے آپ نے فوری طور پر ایسی چیزوں سے خود کو دور کرنا ہے جو زمین پہ گر سکتی ہیں. دوسری بات, دوزانوں میں بیٹھنا ہے اور سر کو ڈھانپنا ہے تاکہ اوپر کوئی چیز نہ گرے. اس کے علاوہ اگر ایلیویٹر پہ آپ موجود ہیں تو کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی ایلیویٹر سے نکل جائیں.
0: اچھا, نہ صرف سر بلکہ گردن کو بھی ایک ہاتھ سے ڈھانپ لینا چاہیے.
1: بالکل, پیروں کے اوپری حصوں کو زمین کے ساتھ لگا کر زانوں اور کوہنیوں کے بل جھکنا اور ہاتھ سر اور گردن پر رکھنا.
3: یہاں پہ مجھے نشان

0: अच्छा खलील साहब, ऐसी सूरत में सबसे अहम चीज क्या है?
1: हमें ये बताया गया कि धुआं हमेशा ऊपर की तरफ उठता है, तो अपना सर जो है छत से जितना दूर रखेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। छुप के निकलने की कोशिश करें, लेकिन आपका हाथ जो है वो जमीन को ना लगे, क्योंकि जमीन पर किचियां हो सकती हैं, राख हो सकता है, अंगारे हो सकते हैं।
2: अच्छा, जलजलों के बाद अक्सर आग लगने के वाकयात होते हैं जो बसाओं का जलजले से भी ज्यादा नुकसान का बायस बनते हैं।
1: अमली तजुर्बात के अलावा यहाँ हमें एक वीडियो भी दिखाई गई जो 1923 में टोक्यो में आने वाले जो तबाहकुन जलजला है उसमें बच जाने वाली एक खातून की डायरी पर मबनी थी। इस खातून ने जलजले की पूरी मंजरकशी की है कि जलजला कब और कैसे आया। खास बात यह थी कि उनके शोहर जलजले में बच गए थे, लेकिन खानदान को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके घर से सामान निकालने के लिए वापस गए और आग के बायस दोबारा कभी ना आ सके।
2: हाय बेचारी, काश वो ने रोक लेती।
0: मैं इसीलिए कहते हैं कि आफात के दौरान दुरुस्त और बर वक्त फैसला सबसे अहम होता है।
1: आखिर में इस मरकज के डिप्यूटी डायरेक्टर कितामुरा शिनजी ने अपने पैगाम में ये बात कही, सुनिएगा। आफात की नौइयत एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होती है, लेकिन एक बात मुश्तरक है कि लोग अक्सर घबराहट में गलतियां कर बैठते हैं। सूरत हाल के मुताबिक तरजीहात भी मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर जलजले के दौरान अगर कोई शख्स बावर्ची खाने में हो तो वो चूल्हा बंद करने के लिए फौरन भाग सकता है और इस दौरान गिरने वाले फर्नीचर की जद में आकर जख्मी हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में लोगों को फौरन आग बुझाने के लिए नहीं भागना चाहिए, उनकी पहली तरजीह अपनी हिफाजत होनी चाहिए। जब लोग घबरा जाते हैं तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि सबसे ज्यादा अहम काम क्या है, और यही अक्सर चोट लगने का सबब बनता है।
2: वाह भाई, ये बहुत अच्छी बातें आपने, बल्कि अच्छी अच्छी बातें आपने हमें बताई। जान है तो जहान है, वाकई कुछ नई बातें हमें पता चली और कुछ बातों या मालूमात में हमें जो है वो ताज़ा हो गई हमारी जो थी वो।
0: अच्छा खदीजा, मैं देख रही थी इन्होंने पानी की आफत का तजुर्बा किया, आग का तजुर्बा किया। मैं समझती थी कि आग ज्यादा खतरनाक होगी, लेकिन अब पता चला कि पानी भी उतना ही खतरनाक है, और दोनों से बचाव की मश्क तो जरूर करनी चाहिए। खदीजा, प्लान बनाएं, किसी दिन चलें हम भी।
2: हाँ जरूर, वाकई चलना चाहिए।
0: तो जरूर जाएंगे, लेकिन अब बारी आ गई मौसीकी की, और आज के मौजू के हवाले से गीत मुंतखब किया गया है आशिताए यानी कल की जानिब। ये गीत गुलुकारा मीशा ने गाया है।
2: मीशा ने NHK कोहाको उतागासन में 8 से ज्यादा बार परफॉर्म किया है। उन्होंने ये गाना 2011 के शदीद जलजले और सुनामी के बाद इमदादी सरगर्मियों की मामनत के लिए गाया था।
1: इस शदीद जलजले की खबरें देखते हुए मीशा ने सोचा कि बहुत से लोग मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं और रात को और भी ज्यादा बेचैनी महसूस करते हैं। उन्होंने उम्मीद की कि ये गाना खुसूसन उन लोगों को सुकून देगा जो खौफ और गैर यकीनी का शिकार हैं।
0: इस गाने का लाइव वर्जन 2011 में टोक्यो के NHK हॉल में मनाकिदा एक कॉन्सर्ट में रिकॉर्ड किया गया। इसकी फरोख्त की आमदन का कुछ हिस्सा उन तंजीमों को दिया गया जो इस आफत से मुतासर अफराद और इलाकों की मदद कर रही थी। तो आइए सुनते हैं।